और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं।

0: iron store halani, wholesale depot, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Angle, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, and Rang Vagera Bazaar Khan Bari at Dastyab Ain.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Raptilai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 03003204372, Ain 02424601000.
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिल

0: कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी।
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर, FM 94, नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: सांगर जे दे जेंदू में 2800 एकड़ खां वधीक सरकारी जमीन पास पर माण्हुनि खे अलर्ट करण ख़िलाफ़ हुरजमात जे समय माण्हुनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। होरन जे रुहानी पेशवा पीर पकार जे नोटिस वठण बाद हुरजमात जे चइनि ख़लीफ़नि जी अॻुवाणी में सवें माण्हुनि ते जेंदू में एहतजाज कयो। अॻवाणी जो थी हुरजमात जो इलाइक़ो आहे तव्हां जे माण्हुनि मुल्क जी आज़ादी लाइ क़ुर्बानी ॾिनियूं। सिंध हुकूमत असल अक़दारनि खे दरबदर करे उहे ज़मीनूं पासर माण्हुनि खे अलर्ट कयूं आहिनि। अलर्टमेंट रद्द न कई वई त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। ऐं गुलशन अदीज में दुकान मां लखे रुपयनि जो धाड़ो, सीसीटीवी फुटेज साम्हूं अची विया। चयनि हथियार बननि दुकान मालिक पप्पन कुमार खे रुमार बणाए 60 खां 70 लख रुपयनि जी माल जा मोबाइल फोन रोग रक़म खणी फरार। सीसीटीवी फुटेज में ॾिसी सघिजे थो त ॿिनि मोटरसाइकिलनि ते सवार 4 हथियारबंद दुकान में दाख़िल थियनि था। हथियारबंद दुकान मालिक रुमार बणाए 1 लख रुपयनि जे माल जा मोबाइल फोन रोग रक़म खणी फरार थी विया। दुकान मालिक पप्पन कुमार जी फरियाद ते स्टील टाउन थाणे ते केस दाख़िल, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा
6: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 55 69।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
5: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 03003385569।
2: It's 11:15 AM.
3: This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब? और जी मेरी तरफ से सुबह का सलाम हो आप सबको। तो जी कैसे हैं आप सब और कैसे हो ये आपकी गुड मॉर्निंग, जरा मुझे ये तो बताते चले आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि भाई आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क सखर। आप मौजूद हैं इस वक्त प्यारी से आवाज़ सुनने, जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं आप विदार जी सन्ना की। और आप मौजूद हैं पूरे पूरे दो घंटे के लिए मेरे साथ, हो चुके हैं बंद और यहाँ पर करने बहुत सारी मजे मजे की बातें। तो जैसा कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आओ बात करें। मैं मौजूद पूरे पूरे दो घंटे के लिए आपको मेरे साथ रहने वाला है सुबह 11 से 1 बजे तक, जैसे कि रहती हूँ मैं आपके साथ। तो जी कैसे हैं आप सब और सुबह का सलाम मेरा आप सबको। पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं हम इस इतवार के आने का, क्योंकि इतवार में ये दो घंटे ऐसे होते हैं जो मेरे आपके साथ गुजर रहे होते हैं और आपके पता नहीं पूरा दिन कैसे एक्सपेंड हो रहा होता है, लेकिन आप लोग मुझे बताते भी नहीं, लेकिन मेरे जो दो घंटे हैं वो आपके साथ ही गुजर रहे होते हैं और ये दो घंटे के अंदर पूरा पूरा दिन जो है ना समाया हुआ होता है। तो ऐसा ही है जी। तो यहाँ पर सुबह का आगाज हमने कर लिया, लेकिन आपने परेशान तो हो रहे होंगे यार, कॉमेंट कैसे करें? जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे वो तो जरूर कॉमेंट करने के लिए परेशान हो रहा होगा और सुनने के साथ साथ मुझे मेरे सवाल, जब मैं बताऊंगी मेरे सवाल देने के लिए भी आप लोग परेशान हो रहे होंगे। तो जी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, इस पर पहले परेशान नहीं होना और टाइप करना है 888 पेज क्यार लिख के विथ योर सिटी नेम और अपने प्यार से नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं। और जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करने के लिए आपने फेसबुक ऑन करना है, GFM88 पेज का पेज आपने ओपन कर लेना है और मेरे नाम का आपको फ्लायर दिख जाता है विथ RJ सन्हा के साथ। आओ बात करें, मैं मौजूद होंगे आप लोग। तो जी आपने वहाँ पर जाके कमेंट करना, लाइक करना और मेरे पेज को शेयर करना है। जी मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों ने किस किसने मेरा पेज शेयर किया, लाइक किया और कमेंट किया है। तो आवाज़ सुनने के साथ देर किए बगैर मेरी आवाज़ को लाइक करना है, मेरे प्रोग्राम को लाइक करना है और शो को लाइक करना है, देन कमेंट कर देना है। तो जी मैं जो सवाल बताने लगी हूँ, सवाल का जवाब देने के साथ साथ आपने मुझे पसंदीदा सॉन्ग भी बताना है हमेशा की तरह आज भी, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सॉन्ग बताते हैं तो जी मुझे पता चल जाता है कि बल्कि आप लोगों को भी ये पता चल जाता है कि यार आपका जो जवाब था वो बिल्कुल ठीक था अगर मैं आपका सॉन्ग प्ले कर देती हूँ। तो आपने यही करना है, अपने मेरे सवाल के जवाब के साथ अपना एक पसंदीदा सॉन्ग भी बताना है, लेकिन वो भी 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि आधे घंटे हमारे पास बहुत इनफ होता है। अगर आप 12 बजे के बाद बताते हैं तो हम लोग सॉन्ग प्ले नहीं कर पाते क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम हो जाता है, फिर आप लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं यार आपने हमारा सॉन्ग प्ले नहीं किया। तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला आज। आपने क्या करना है, आप मुझे टाइमली जवाब दे देना है मेरे सवाल के जवाब का।

तो जी एक बहुत खूबसूरत सा गाना मेरे पास मौजूद है फैज़ अली की आवाज में, तो जी सुनते हैं सॉन्ग को और करते हैं साथ में एंजॉय, रहेगा मेरे साथ, उसके बाद मैं सवाल बताऊंगी। तो जी ये कर दिया है सॉन्ग मैंने प्ले, प्ले कर दिया है प्ले। ओके जी

0: सखर की आवाज। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

शहर की आवाज। खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारन जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाउन जो शानदार ऐलान हाने

0: ॿारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स जी बी एस एन जी बी एस एम ऐं पंज साल डी पी डी जॾहिं त ॿिनि सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम एल एच वी सी एम डब्ल्यू ऐं सी एन ए ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूदु आहिनि जॾहिं त ॿ सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुलु फ्री आहे सहूलियतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूदु आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस ए सी क्लास रूम्स जदीद लेबोरेटरीज कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे दाख़िला महदूद आहिनि तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर फोन नंबर 07156358311207 छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़ जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी
1: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में
0: सखर शिकारपुर रोड ते
1: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं
0: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
1: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो
0: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर
1: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा
0: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़
1: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं
0: साफ़ मिठो पाणी
1: बिजली गैस
0: 24 कलाक सिक्योरिटी
1: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे वेझो आहे
0: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही बहितरीन
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आरई 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: मेरी जिंदगी थी वो, मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8।
2: ये इफ्तिखार अहमद यहाँ पर कर रहे हैं हम आपका वेट, और देखते हैं इसके अलावा हमारे साथ और कौन मौजूद।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीए एफएम 88
2: सिंध की आवाज।
1: यूं तो है मशहूर मासूम शाह का मीनार,
2: सखर की खजूर,
1: सिंध का बढ़ाती है मान,
2: सखर बैराज की शान,
1: और अब आवाज की सूरत बनी है
2: सखर की एक नई पहचान।
1: जीए सखर FM 88
2: सखर की आवाज।
1: जीए FM 88
2: सिंध की आवाज।

ईरान ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जूं जवाबी कार्रवायूं जारी आहिनि। खिते में मौजूद अमरीकी फ़ौजियुनि ते हमला बाज़ार इनकलाब पारां उहिदनि जे प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खे तबाह करण जी दावा। बहरीन ऐं कतर जी राजधानी में ॿ धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। पाकिस्तान इनकलाब दावा कई त ओमान जे तखम बंदरगाह ते अमरीकी लॉजिस्टिक ऐं तेल फराहम कंदड़ मर्कज़नि खे निशानो बणायो आहे। यूएई जे दिफ़ाई वारे वज़ीर चयो आहे त मुल्क जो दिफ़ाई निज़ाम ईरान तर्फ़ां ईंदड़ मिज़ाइल जनि ड्रोन्स जो मुक़ाबिलो करे रहियो आहे।

ईरान के पंहिंजे फैसले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेंट हैक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते बिना में चयो आहे त ईरान ग़लति फ़ैसिलो कयो, हाणे कीअं क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर हुसैन काम जो पैगाम बि शेयर कयो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नजद गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असां वट जगह जो ॾियारियूं, जगह जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

अरे जिना, अरे यार मेरा नाम सन्ना है, क्या क्या नाम आप मुझे लेके बता रहे हैं। कहते हैं कि योर वॉइस इज वेरी गुड, आई लिसन टू द शो विद ग्रेट। ओके, कैसे हैं आप? और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कि नूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं नूर हुसैन तोनियो फ्रॉम लाड़काना, योर शो इज ग्रेट। थैंक यू सो मच नूर हुसैन तोनियो, और ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया कि आप बहुत टाइम बाद आप मेरे साथ शो में मौजूद हुए वापस, बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा मसूर अहमद हमें कहते हैं सना जी प्लीज लिसन टू द ओएसटी सॉन्ग ऑन योर फेवरेट। ओके जी, लास्ट में अपने पसंदीदा ओएसटी सॉन्ग प्ले करती जाऊंगी जो आप सब सुनेंगे, मेरी तरफ से डेडिकेट होगा मसूर अहमद को। और स्टेप इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। ओके ठीक है, ठीक है जी, जरूर ऐसे ही करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास फरमाइशी सॉन्ग था वो भी जरूर प्ले करेंगे, जो हमें शहबाज ने कहा था कि सॉन्ग ये कि जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से जी भर गया। मैंने आपको उस दिन भी ये बात कही थी कि यार ऐसे सेट से सॉन्ग खुद भी ना सुने और हमें भी ना सुनाए, जिंदगी बहुत अच्छी है, ये हमने अपने आप को खुद मजबूर किया हुआ है परेशान रहने पर। तो ऐसा ही, और उसके अलावा देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं कि सकर से कि सन्ना मुझे आपकी वॉइस से प्यार हो गया है, सो नाइस वॉइस, दिल से दिल तक, आई एम मशीन और आई ओके। तो भाई ऐसे कैसे, हाँ ठीक है आवाज़ से भी हो जाता है लेकिन मुझे गुस्सा ही बहुत आता है भाई, अगर किसी दिन अगर गुस्सा आ गया तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे कोई प्यार नहीं हुआ ऐसे ही है ना जी। तो और उसके अलावा नहीं नहीं अच्छी अच्छी बात है, हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि कर से आपने मुझे मैसेज किया है, कहते हैं कि दिंगान पर गड़ी से अजीज सोलंगी, ये कौन सी जगह बताइए, मुझे नहीं पता। अजीज सोलंगी जवाब है, और गाना फौजिया सुमरो टोक्यो सारन लाजानी मुके जमानो लगंदो। ओके जी, ज़रूर ज़रूर हम आपको सॉन्ग भी प्ले करेंगे। और उसके अलावा लाड़काना से हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि लियाकत अली काकरानी लाड़काना वेयर नाइस शो, अच्छा वी आर नाइस शो, वेरी नाइस, ओके स्पेलिंग आपने थोड़ी गलत लिखी है, वेरी नाइस शो जवाब है, ठीक है थैंक यू सो मच लियाकत अली खकरानी, आपने हमारे साथ शो को ज्वाइन किया, मेरे साथ मौजूद हैं। तो ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना हर संडे संडे, और जैसा कि मैं कर रही होती हूँ आपका वेट, और ऐसे ही है आज भी। तो चलें ठीक है, आज हम सॉन्ग प्ले कर लेते हैं शहबाज सोलंकी का कि जिंदगी देने वाले सुन तेरी तेरे तेरी दुनिया से दिल भर गया। ओके जी सुन लेते हैं थोड़ा सा सॉन्ग, थोड़ा सैड लेंगे हम, थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करेंगे क्योंकि फरमाइशी सॉन्ग है, दो दफा हमें ये कहा गया है। ओके जी तो करते हैं ये सॉन्ग प्ले, सुनते हैं एंजॉय करते हैं, रहिएगा मेरे साथ, करते हैं सॉन्ग एंजॉय।

ये सुन रही थी यहाँ पर हम लोग एक फरमाइशी सॉन्ग के जिंदगी देने वाले तेरी दुनिया से दिल भर गया। तो ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था सैड सॉन्ग नहीं सुना करें भाई, और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने खुद अपने जो है ना इस तरीके से खुद मतलब कहते हैं ना जीना हराम किया हुआ, हमने खुद किया हुआ होता है मतलब ज़्यादा उम्मीदें लगा कर ज़्यादा शौक पाल कर, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है बहुत खूबसूरत है, तो ये एक ही दफ़ा मिलती है ज़िंदगी, तो आपने इसको हर रोज़ एक नई ज़िंदगी के साथ एक नई खुशी के साथ जीना होता है। तो जी यहाँ पर इसके अलावा और भी हमारे पास फरमाइशी सॉन्ग्स हैं जो कि हम प्ले करेंगे, बल्कि हम प्ले करते हैं अभी।

जो हम लोगों को राइट आंसर दे रहे होते हैं, जैसे अजीज सोलंगी ने एक फरमाइश की हमें एक सॉन्ग की फजीहत सुन लो गाइस, सॉन्ग है तो जरूर हम प्ले करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करेंगे क्योंकि जो सेट सॉन्ग होते हैं हम वो थोड़े से ही प्ले कर पाते हैं। तो जी आपने ऐसे सॉन्ग बताने होते हैं जो उधम वाले हों, दिन के हिसाब से हों, आपको रुलाते हुए को हंसा दें, ऐसे सॉन्ग बताया करें, बाकी अब हंसा हुआ बंदा भी ना रोए ना, ऐसे सॉन्ग ना बताया करें। ओके तो करते हैं सॉन्ग प्ले, थोड़ा सा इस सॉन्ग को भी सुन लेते हैं, रहेगा मेरे साथ, कर दिया सॉन्ग को मैंने प्ले।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: तो यार यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं, अभी हम किसका प्ले करें किसका प्ले करें, टाइम देखा तो यार सिर्फ 2-3 मिनट मतलब हमारे पास एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने के लिए रह गए थे, और उसके अलावा हम देखते हैं तो सिर्फ 15 मिनट हमारे पास मौजूद है, 15 मिनट में हमें बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले करने हैं जो कि मैंने अपने लास्ट में प्ले करना है, और उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो के प्ले करने हैं हमने। तो क्यों ना मैंने सोचा कि यार आप लोगों से ये पूछा जाए कि अब आप लोगों ने मुझे पहले ये बताने कि आज के आपकी एक्टिविटी क्या होने वाली है, क्योंकि अब आपने मुझे ये बताना है कि मेरे शो के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, या कोई जब मेरे पास आप लोग सुन रहे होते हैं तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स आपके जहन में आ रहे होते, तो आप लोग भी ये सोचते होंगे ना यार कि हमने ये सॉन्ग क्यों नहीं बताया, वो सॉन्ग क्यों नहीं बताया, तो इसलिए बोलती हूँ आप लोग मुझे टाइमली सॉन्ग बता दिया करें ताकि बाद में रिग्रेट आपको ना हो। तो जी ऐसा ही है, तो आपने क्या करना है अभी, आपने सबसे पहले उठ के मुझे ये बताना है कि आपकी आपकी एक्टिविटी क्या होने वाली है, देन मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया वापस से छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं एक और सॉन्ग प्ले, जब तक आप सोचेंगे वो सॉन्ग कौन सा हो सकता है और आपका मोस्ट फेवरेट ड्रामा रह चुका है वो उसका उस चीज सॉन्ग है, इतना मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग जाए जहन लगाए, जब तक यहाँ पर हम लोग चलते हैं छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, रहेगा मेरे साथ।
1: GAFM 88 Network, Cindy.

तो जी जैसे कि सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग इश्क मुर्शिद बिलाल अब्बास का ये सॉन्ग था जो कि हमने सुना, बहुत अच्छा है ये सॉन्ग। और जैसे कि इसका ड्रामा भी हमारा और आपका, मेरा और आपका, मेरा तो चले नहीं क्योंकि मैं तो बहुत कम ही देख रही होती हूँ, बाकी आपका ये फेवरेट सॉन्ग ड्रामा रह चुका है मुझे पता है क्योंकि फेमस था ये ड्रामा और इसके न्यू वर्जन इन्होंने किया था साउंड ट्रैक के साथ ओरिजिनल। तो कैसे हैं और आप, इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास कमेंट आना शुरू हो गए हैं भाई। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं हमारे पास और 10 मिनट के अंदर इतने सारे कमेंट्स जमा होते जा रहे हैं तो बंदा किसी इसको जवाब दे अभी, क्योंकि सॉन्ग्स हम लोग प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही एंड हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में करना है मैंने लास्ट में डेडिकेट सॉन्ग और आप सबको, और इसके अलावा सिर्फ 3 मिनट हमारे पास रहेगा। 3 मिनट में क्या क्या सॉन्ग्स प्ले हो सकते हैं या कौन कौन से सॉन्ग्स प्ले हो सकते हैं ये ज़रूर आप लोग देख के बताएं। लेकिन आप, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन किया करें क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर आप लोग टाइमली ज्वाइन नहीं करते तो हम लोग कोई सॉन्ग्स जो होते हैं या कोई कॉमेंट्स होते हैं वो देर से अगर रिसीव होते हैं तो देर से मतलब के उसको रिप्लाई कर पाते हैं, या अगर सॉन्ग होते हैं तो देर से प्ले कर पाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, लेट हो जाता है। फिर आप लोग कहते हैं यार आपने हमारी फरमाइश पूरी नहीं की, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सबकी फरमाइश पूरी होती है लेकिन टाइम के साथ। अगर आप लोग, मेरा टाइम है भाई कि मैं, मेरा साथ आपके साथ रहता है पूरे सुबह 11 से तो 1 बजे, तो आपने क्या करना है सुबह 11 बजे ही मुझे ज्वाइन कर लेना है यार, मैं भी तो आप लोगों के साथ ज्वाइन करती हूँ तो आपने भी तो मुझे ज्वाइन करना है 11 से। तो जी मेरा सवाल आपने सुनना है, मेरे सवाल सुनने के साथ आपने जवाब देना है, जवाब देने के साथ आपने एक फेवरेट सॉन्ग बताना है क्योंकि अगर वो आपका जवाब ठीक होता है तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। तो इट्स मीन ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप लोग राइट है या रॉन्ग है, जिससे आपको सब्र नहीं हो रहा होता कि यार हमें पता करना है कि हम गलत हैं यार सही हैं, तो इस वजह से। बाकी ये कि मैं आपको तो 12 बजे के बाद वैसे भी अपना जवाब आपको बता ही देती हूँ कि भाई ये कौन ठीक है कौन गलत है, किसका जवाब ठीक है किसका नहीं। तो ऐसे ही जी देखते हैं, अभी हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं, कहती हैं रिहाना खान बकर से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम विथ रिहाना खान बकर, और कहती हैं रिहाना खान फ्रॉम बकर, बकर से वो हमें सुन रही हैं, कैसी हैं आप रिहाना खान और थैंक यू सो मच आपने मुझे ज्वाइन किया है, थोड़ा लेट हो गई हैं, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई हैं लेकिन आपने क्या करना है नेक्स्ट मुझे जल्दी ज्वाइन कर लेना है सुबह 11 से तक, 11 बजे से सुबह दोपहर 1 बजे तक रहता है, जिससे कि आपको और मेरा साथ आओ बात करें मैं विद आरजे सना के साथ, आपने रहना है मेरे साथ हर संडे संडे ओनली हर वीकेंड। तो जी आपने आओ बात करने के लिए बहुत सारी बातें जमा करनी है, अगले इतवार को जब मैं आऊँगी आप लोगों से बहुत सारी बातें सुनूंगी। और ये बताइएगा कि आपके आज की क्या एक्टिविटी, आज आप खाने में क्या बना रही है रिहाना खान सिस्टर, अगर आप कुछ बनाया है या बनाएंगी तो जो भी है वो मुझे जरूर बताएं। लेकिन नहीं नहीं मैंने आपके पास नहीं आना, आपने मुझे भिजवाना है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सुकून से अपने घर में जो भी आपकी एक्टिविटी आप वो करें। और मुझे ज्वाइन किया है बहुत अच्छा लगा है, ऐसे आपने हमेशा मुझे ज्वाइन करते रहना। जी यहाँ पर लास्ट में एक सॉन्ग हम प्ले करेंगे जो कि मेरी तरफ से होगा, मेरी पसंद का सॉन्ग होगा, ओएसटी सॉन्ग है ड्रामे का। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी, जो सॉन्ग मैं अभी प्ले करूंगी ये मुझे ड्रामा फेवरेट है मेरा, कोई और ड्रामा मुझे मिले ना मिले मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, यूट्यूब पे जाके ये ड्रामा सर्च कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इसके जो एक्टर्स हैं वो भी दोनों बहुत पसंद हैं, तो इसलिए। तो अभी आपने सुनना है मेरा ओएसटी सॉन्ग और उसके अलावा फिर हम चलेंगे टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ की तरफ, क्योंकि फिर मिलेंगे एक अगले इतवार को एक नए सेगमेंट के साथ एक नए सवाल के साथ। तो जब तक रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में मुझे भी याद रखना है, मेरी भी दुआ में आप हमेशा मौजूद हैं। तो मुझे ज्वाइन करने के लिए तो सबसे पहले आप परेशान नहीं हुआ करें, 888 पे SKR लिखे विथ योर सिटी नेम, आप सिंपल से मुझे SMS कर सकते हैं, फेसबुक पे आप GFM88 का पेज आपने ओपन करके आओ बात करें विथ आरजे सना के साथ फ्लायर आपको मेरा दिख जाता है, वहाँ पर जाकर आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक करना मत भूला करें और आवाज़ सुनने के साथ देर के बगैर शेयर भी किया करें। ओके जी तो यहाँ पर सॉन्ग करती हूँ मैं प्ले और उसके बाद चलेंगे हम अल्लाह हाफिज करने की तरफ और मिलेंगे एक अगले इतवार को, जब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ये सॉन्ग कर दिया है मैंने प्ले, इश्क है। ओके जी ये सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में, सॉन्ग ये बहुत बेस्ट है, ड्रामा इतना बेस्ट था तो ड्रामा का सॉन्ग कैसे नहीं होगा। ओके जी कर दिया मैंने प्ले, सुनते हैं इस सॉन्ग को।

0: सिक्योरिटी फोर्सिस के ताजन कार्रवाई में टे खारजी दहशतगर्द मारजी वह अंग 105 थी पो पाक फौज एफसी बलूचिस्तान ए पुलिस के गडियल ऑपरेशन शाबान जारी सिक्योरिटी जरिए चवण है ऑपरेशन शाबान में मारजी वह दहशतगर्दन जो अंग 67 थी वह है। 5 जुलाई का जारी शाबान ऑपरेशन ए बेन ऑपरेशन में 105 दहशतगर्दन के जानम भीणो कयो है। आखिरी दहशतगर्दन के खात्मे ताई बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहंदो। अमरीकी फौज के ताजन हमलों बाद पासदारान इनकलाब अपने हुरमज बंद कर छो। ईरानी फौज बिना इजाजत के गुजरण से साइप्रस की बहरी जहाज के नाकारा बनाए छो। रदअमल में अमरीकी फौज और ईरान की साहली इलाके असलविया और बोश शहर से फिजाई हमला सेंटकाम चाहे साइप्रस के जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान से हमला किया वह है। ईरान से हमलों जो टों मरहलो मुकम्मल थी वो है। हमलों में 140 फौजी हंधन से मजमूई तौर से 300 हंधन के निशानों बनाया वो है। ईरान से अमरीकी हमलों बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाई जारी खिते में मौजूद अमरीकी फौजियों से हमला पासदारान इनकलाब उर्दन के प्रिंस आसन वेद बेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने की दावा बहरीन और कतर की राजधानी में तबाहक आवाज बुधा वह पासदारान इनकलाब दावा कई तो ओमान के दखम बंदरगाह से अमरीकी लॉजिस्टिक तेल फराम कर मरकजन के निशानों बनाया हुआ है। यूएई के दिफा वाले वजीर तो मुल्क जो दिफाई निजाम ईरान तरफा इंदर मिजाइल्स ड्रोन जो मुकाबलो कर रो है। ईरान के पेंे फैसले की कीमत अदा करनी पवी। अमरीकी दिफा वाले वजीर पैथ हैगस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेक्स के बेना में ईरान गलत फैसलो कर हाँ कें कीमत अदा करनी पवी। अमरीका दिफा वाले वजीर सेन काम जो पैगाम भी शेयर कर। चयो हो वायदो पूरो कयो या वायदे की भंजकड़ी की कीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ चवा एक तरफ मुआदे जो दौर खत्म थी चुको है पैंजा कल वायदा पूरा कयो या वायदन की भंजकड़ी की कीमत अदा कयो हकीकत अवां जे सामू है। वफाकी हुकूमत में तब्दीली ए नवन चेहरन की आमद जो इम्कान जरिए मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ काबीना में तब्दीली बाबत मुशावरत मुकम्मल कर छी। नवन शामिल थींदड़ मेंबरन के मुल्क के वजीर जा ओहदा देने जो इम्कान वजीर आजम वफाकी वजारतन की कारगर्दगी से सवाल उथारा। वजीर आजम एक्सपोर्ट में मुतमिन कंदड़ वाद न थियण सबब गणती जो इजहार किया है। चावर बटालू फ्रूट्स के एक्सपोर्ट में नतीजा न मिलने से कावड़ इजहार भी किया। वफाकी राजधानी इस्लामाबाद में तेज हवाओं से गड बरसात खराब मौसम सबब केतरी उदामू मुतासर मौसमियात का चवण है। तजब इस्लामाबाद पंजाब के मथाई वारे इलाक बलूचिस्तान के पी में कुछ हंधन से तेज बरसात जो इम्कान है। शहरपुर में पीपल्स पार्टी पारा मरसू मरसू सिंधु नांडेसू जो उनवान हेठ रैली अगवाण जो सिंधु दरिया सिंध की सुणप ज़रात ए मैशियत है। सिंध तास मुआदे तहत दरिया के पानी बाबत थियल आलमी मुआदे जो एतराम किया वे भारत मुआदे की भंजकड़ी करण या सिंध के पानी के धार हण की कोशिश कई तो पीपल्स पार्टी या सिंध अवाम खेस माफ न कद। बिलावल भुट्टो जरदार की क्यादत में सिंध के पानी सिंधु दरिया ए अवाम के आनी हक की तहफुज लाइ जदोजहद जारी रही। सखर में मर जतोई खूनी तकरार जरगे की फतवा अज बुधाई वेंदी। सर्किट हाउस सखर में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम पुलिस की वही नफरी मुकरर बिन्हीं धुरन जहा मू चंगा मुड़ सर्किट हाउस पहुंचन शुरू थी वह। अलीगोहर खान बहर इब्राहिम खान जतोई जगवाणी में फतवा बुधाई वेंदी। टिन मकसूद बाबत एतराजन सबब मुलतवी थियल फतवा अज जारी थे इम्कान मर जतोई तकरार में हेल तई 55 इंसानी जानू जया थी चुक्य।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन के जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर. और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर से. और जी आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ हैं और कौन कौन से समाते हैं, ये हमारे साथ जरा आप शेयर करने वाले हैं. इसी के साथ साथ हम आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में भी तफसील से बताने वाले हैं. ओके जी, तो सब कुछ बताएंगे और बहुत सारी बातें हैं जो बताने वाली, लेकिन साथ साथ सबसे पहली जो बात है वो ये कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक क्या पूछा जा रहा है उसकी जानिब आ जाते हैं. ओके जी, तो अगर आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज जो मेरा आप लोगों से टॉपिक होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, हम मूवीज में देखते हैं, मैंने रियल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी इंसान की जो ना किसी इंसान को मेमोरी लॉस हो गया हो, यानी कि उसकी याददाश्त चली गई हो, उसने सब कुछ भूल दिया, उसका मतलब जो भी उसके साथ हो वो सब कुछ भूल जा रहा हो. मैंने रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ मूवीज में हमने बहुत मार देखा. लेकिन ऐसा है कि अगर आप जो है ना, आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, या फिर आपने भी मूवीज में देखा है, लेकिन सवाल जो है वो कुछ ऐसे ही से रिलेटेड होने वाला है आज के प्रोग्राम का, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है, यानी कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो आज आप मुझे जरा ये बताइए कि फिर वो अपनी लैंग्वेज कैसे जो है ना उसे याद रह जाती है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वो तो अपनी लैंग्वेज भी भूल जाए ना, मतलब एक चीज नए से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें ना, फिर उसे अपनी लैंग्वेज क्यों याद रहती है, लैंग्वेज कैसे याद रह सकती है, ये आप जरा आज मुझे बताएंगे. तो जल्दी जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे एल आर के सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8821 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है. ओके जी, तो फेसबुक पेज को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा जो है ना वो पेज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. ओके जी, चलिए जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं. और साथ साथ बताइए अगर किसी इंसान की ना मेमोरी लॉस हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, तो फिर उसे अपनी लैंग्वेज कैसे याद रहती है और क्यों याद रहती है, ये बताइए जरा मुझे. ओके जी, सो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है. और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो उसके लिए आपने जो है ना वो डायल करना है 03 1579 0595, बुढ़ी 315 79 595. ये नंबर उन लोगों के लिए है जो भाई ये कह रहे हैं कि भाजी हमारे एरिया में तो नहीं मिल रही व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हमारी एरिया में तो नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो आप जो है ना इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और नंबर के ऊपर रابطہ करते रहिए. ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए और उन्हें जरा पोस्ट शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि खूबसूरतियां आपको कैसे मिलने वाली है. आजकल देखा जाए तो हर कोई जो है ना वो परेशान है खूबसूरती को लेकर, लेकिन आपकी ये परेशानियां आप दूर कर देते हैं. तो बिल्कुल जी, मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं जेकब आवाज से, खुश आमदीद कहते हैं भाई जान को. सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ मौजूद है, सरफराज सोलंगी आपको भी वेलकम करते हैं, दर्दे दिल आ चुकी हैं, हेलो, और कहते हैं चलो चंद आ गई, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, स्वीटी को वेलकम करते हैं. और फहीम शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अदरत खुश आयो, सफा चाक चंगा भला, जी जी सब कुछ आयो, चाक चंगा भला, ता बुधाए की आयो, कहते हैं जो गानो बुधाए जो भला, बिल्कुल तांके गानो बुधराइना सी. और हिदायतुल्लाह अहमद आने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, मैं आज गया हूँ, मैं अच गया हूँ. ओके जी, बिल्कुल आज फ्री होकर, क्योंकि संडे है तो आज ये सॉन्ग सुनाना साहिर अली बगा का पश्तो, चलें चलें बिल्कुल सबकी फरमाइशें लगाएंगे, और लेकिन गाने अच्छे अच्छे वाले बोलिएगा. और उसके अलावा दिलावर खान हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया. वासा भाई आ चुके हैं, हेलो वासा भाई, छाला तान्यो खुश आयो. ओके जी, यासीन खंड भी हमारे साथ मौजूद कहते शिकारपुर से। नियाज भुट्टो शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस सॉन्ग। शमन अली मीराली का सुनाइएगा, बिल्कुल सुनाएंगे आपको। और मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम टू द शो। स्वीट बुआ जी आपको भी खुशियामदीद करते हैं। और आबिद नौशीरो से हमारे साथ है जी। फिरोज अली बिरोही भी हमारे साथ है, खुश आमदीद करते हैं भाइयों को। मिदड़ी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक। और उसके अलावा दर्द दिल कहती है कि जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब दलील से नहीं, वक्त से मिलते हैं। वक्त खामोश रहकर भी सब कुछ वाजे कर देता है, कौन मुखलिस था, कौन मतलबी, कौन नेमत बना और कौन सिर्फ एक आजमाइश। वक्त का इंसाफ सबसे मुनफरिद होता है, ना उसे गवाहों की जरूरत होती है ना दलीलों की, वो इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जवाब दे देता है और उसी में असल हकीकत आश्कार हो जाती है। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और आपको खुश आमदीद करते हैं जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछ रहा था वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। और सवाल मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, एक इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, तो आप मुझे ये बताइए तो उसे फिर अपनी जबान कैसे याद रह जाती है? वो भी देखा जाए तो उसे भूल देनी चाहिए थी ना, क्योंकि सब कुछ भूल जाता है तो जबान भी भूल देनी चाहिए। तो मुझे बताएं ये क्या सीन है भाई, ये क्या मैटर है? इसके ऊपर आप क्या कहने वाले हैं जल्दी से बताइए। शामले प्रोग्राम होते जाइए और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। टाइम हुआ चाहता है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: GAFM 88 नेटवर्क।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हले
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

आजकल के दौर में भाई बहुत आसान काम हो चुका है, क्योंकि इतनी मजी मजे के प्रोडक्ट्स, इतनी शानदार क्वालिटी की प्रोडक्ट जब मार्केट में अवेलेबल है तो आपकी तो चांदी ही चांदी है भाई. सोना महंगा है ना इसलिए. ओके नहीं तो आपको गोरा चिट्टा बनाने का काम करेंगे जी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे, लेकिन जरा टॉपिक रिपीट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या पूछा गया है. तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में, ड्रामों में, हर जगह आपको ये पता है कि एक इंसान की यादाश्त चली जाती है, ठीक है, मेमोरी लॉस का तो आप लोगों को पता ही होगा. तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है, ठीक है, तो उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है. ये तो एक मतलब वो बात हो गई ना कि भाई हमें वो बचपन से पागल बनाते आ रहे हैं कि मेमोरी लॉस होने के बाद तो इंसान देखा जाए बेसिकली सारी चीजें उसको भूल जानी चाहिए, लेकिन वो अपनी जुबान कैसे याद रखता है, ये जरा लॉजिक समझ नहीं आ रहा. तो इसको जरा ये डाउट है, इसको क्लियर कीजिए और साथ बताइए जल्दी से कि आपका इसके ऊपर क्या जवाब होने वाला है. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद दीजिए प्रोग्राम में, जल्दी से बताइए कौन कौन हमारे साथ है और कहां कहां से आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बुरी 315-79-5595, ठीक हो गया. ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर किशोर भाई आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम. और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे दिमाग क्या दिमाग गया नहीं, तो देखा जाए तो ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली ना कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. निदड़ी कहती है ठीक नहीं थी, ठीक हो गई अब, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया. और फहीम कहते हैं टॉपिक मेरे ख्याल से वो अपनी जबान भी भूल जाता है, उसे इशारों से बातें सिखाई जाती हैं. अच्छा, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा. और इकबाल आशारी हमारे साथ विलेज सोनो खाल आशारी मेरे को खास से सुन रहे हैं, भाई को वेलकम करते हैं. और यासीन कहते हैं लगता है आज आपका मूड सही है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. और हिदायतुल्लाह कहते हैं डिप्रेशन. और उसके अलावा सरफराज अली कहते हैं हमें जवाब नहीं आ रहा, हमको नहीं पता. और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक ये तो जब मेरी मेमोरी लॉस होगी तभी पता चलेगा. नहीं, आपने जो इतनी मूवीज इतने ड्रामे देखे हैं तो बताए ना क्या सीखा उनसे. हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ हैं जी. वालेकुम अस्सलाम. सनाउला बिरोई हमें सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम, ठीक हुए, आप बताएं आप कैसे हैं. ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा शो तो बिल्कुल कीजिए. साथ साथ अगर आप वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सर आप लोगों को बताते हैं कि जब आप वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना. तो अगर आप भी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये तो आप जानते हैं. तो बिल्कुल सी, अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है. और उसके अलावा व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एश की लवली क्रीम मिल रही है जो कि फेयरनेस क्रीम है. तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है, अगर आप नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं तो व्हाइट एश की ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे. अगर आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं, आप लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है लेकिन आपको फेयरनेस फार्मूला चाहिए, क्रीम चाहिए, तो आप व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. और व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि फेयरनेस

फार्मूला है जिसे हर एक इंसान लगा सकता है। दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग वाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइट एज लवली क्रीम जो है ना, वो उसे तैयार इस तरह से किया गया है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है वो लगा सकता है, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर्स हैं, लड़के लड़कियां, अंकल आंटियां, सभी इस्तेमाल करेंगे। घर का एक एक इंसान वाइट एज लवली क्रीम को लगा सकता है, क्योंकि जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन का फार्मूला है। 30 वाइटमिन कैप्सूल इसके अंदर एड किए गए हैं, और मजे की बात की इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। ऐसा नहीं कि अब हम ये जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ का, ये मुझे ही पता है कि भाई मैंने कितनी बार कोशिश करा कि भाई मुझे मेरे टाइप का जो ना स्किन टाइप का सन ब्लॉक मिल जाए, लेकिन कभी मिलता ही नहीं था। और ये जो चीज है हमारे पास, अगर बनी बनाई चीज एक मिल जाए हमें जिससे बस हमने सिर्फ फायदा उठाना है, तो आपके पास वाइट एज लवली क्रीम मौजूद है जिसके अंदर आपको सनब्लॉक की क्वालिटीज भी मिल रही हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और आप इस्तेमाल करेंगे इसे किस तरह, जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, सुबह लगाएं जब आप किसी काम से जाएं, कोई काम है या आपका कोई जॉब करते हैं, तो आपने बस अपना फेस वॉश करना है और वाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक नहीं प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप टीनेजर हैं तो टीनेजर्स की स्किन पे जो ना काफी ज्यादा एक्नीज आ जाते हैं, तो एक्नीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि इसे जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, और ये आपके एक्नीज को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात है वो खत्म हो जाते हैं। आपके चेहरे पर अगर बहुत ज्यादा निशानात हैं, या फिर जैसे आंखों के हल्के हैं, या फिर रिंकल्स आ चुके हैं, या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के कोई भी निशानात अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके उन्हें जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। लगाने के तरीकेकार भी बिल्कुल आसान है, जैसे आप जो है ना अपना फेस वॉश करते हैं, और हाँ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना इसे आप दिन में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे, यानी कि आप सुबह में भी लगाइए और रात में भी लगाइए। जब आप सुबह उठें तो आप लगा लीजिए, और जब आप सोने लगें तब भी आप लगा लीजिए, लेकिन लगाने से पहले अपना जो ना फेस वॉश लाजमी किया करें। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन ढूंढ रहे हैं, तलाश है अच्छे से साबुन की, तो आपके पास वाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है, और वाइट एज ब्यूटी सोप जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट एज का ब्यूटी सोप जिसके अंदर एवका जो है, एलोवेरा है और मिल्क है। उसके अलावा अगर आप चलें सोप नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं, तो आपके पास वाइट एज का जो है ना फेस वॉश भी मौजूद है। ओके जी, तो वाइट एज का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, और उसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है। और मजे की बात बताऊं तो जनाब, विटामिन सी वाला जो ये वाइट एज का फेस वॉश है ना, ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे लगाएंगे तो आप कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए वाइट एज का फेस वॉश या फिर सोप, जो भी आपको ईजी लगता है, जो भी चीज आप लगाना पसंद करते हैं, बस लगाते जाइए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए, और हमेशा के लिए टिप टॉप बनी रहिए, और साथ साथ डायल करती रहिए 03151799 0595। मुड़ी 1315 79 5595 ही नंबर आए जो तमाम आसानी जी लाया है। अगर तुम पाजे करीबी जनरल स्टोर से वाइट एज तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने चाहिए था, तो देम तमाम के ही नंबर डायल करो पंदो, एंड नंबर डायल करने का पोई तमाम जे करीबी जनरल स्टोर से वाइट एज तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेदा। सो अवेलेबल करायो एंड पाजे लाए आसानी पैदा कयो, समझो ता पाजे लाए भी, पाजे आसपास जे मानन जे लाए भी। ओके, सो वाइट एज जो एतरी गाली वाइन जके तमाम इस्तेमाल करना, तो तुम्हें खबर पड़ी वही तुम्हें बुधाईदा भी रहासी। और विलेज से गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगूजा से दिलावर हुसैन सोलंगी है, बाजी सिद्राब कैसी है, और शेला गुल का गाना सुनाइएगा, और कहते हैं 8 दिन हो चुके हैं आज मुझे मुझ पर नहीं, आज लास्ट टाइम आपका गाना मैंने चलाया था, कुछ शायद 1-2 दिन हुए, और चले मैं कोशिश करूंगी आज जो आपने गाने की फरमाइश करी लगाएंगे। डेडिकेशन आपकी जा रही है किसको, नजीर सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड तैयब सोलंगी के नाम चले जी, बहुत शुक्रिया हो गया आपका। और फाह डेरी है सऊद डेरी फ्रॉम नवाबशाह सलामती शो नाइस है तमाम जो मोहब्बतों प्यारे भाजू, और हमारे साथ है जी प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सलाम पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज दीबा सहर का कोई भी सॉन्ग अपनी पसंद का प्ले कीजिएगा। ओके डन। और हमारे साथ है जी ये दादू खान हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हाजिर हाजिर हलायूं।

अच्छा अच्छा था जो अदा जो वापस दुनिया में आई थी तुझी जुबान केड़ी हुई मुझी जुबान त हुई पर मां कुछ गालाई थी कोन हुयो मुझे एतरो एटीट्यूड हुयो मां बिन सालन ताई केसा गालो ही कोन हुयो हाणे बि घटि ॻाल्हाईंदी आहियां पर ॿिनि सालनि ताईं कंहिंसां ॻाल्हायो ई कोन हुयो ॾिसो त लही छोकिरीअ जी अच्छा मिठो सुमरो मारे साथे मिस्त्री ओके जी फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहा हूँ प्रोग्राम लशपश है और इंजॉय कर रही हैं आपकी आवाज को प्लीज फायजा अली का गाना सुनेगा दोस्त मुमताज अली सुमरो एंड फराज अली सुमरो सजाद अली सुमरो के नाम चले मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगा दूंगी और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद से आप हमारे शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं ओके जी महामान जमान लिखते हैं टॉपिक

मैम कहती हैं आप बहुत अच्छा करती हैं, ड्रामे नहीं देखती हैं, मैं भी नहीं देखती हूँ, कभी कभी अरीबा जोरी मुझे ड्रामा दिखाती है तो देखकर मुझे शायद आपको गुस्सा आता होगा, इसके बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है। नहीं, पहले मैं बहुत देखती थी, लेकिन अब जरा मैंने खुद के ऊपर कंट्रोल लगाया है कि ये सही नहीं है दया, तो थोड़ा अपनी जिंदगी में इंसान को सीरियस होना चाहिए।

इहो ई त ॾोह आहे त हू ग़रीब ग़रीब जे लाइ नाहे ठहियो नो प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगाते जाइए खूबसूरतियां हासिल करते जाइए एम अंसारी लिखते हैं कि लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो फितरतन मिली हुई है और फितरत इंसान में ऊपर से डाउनलोड होती है अच्छा मनैया गाल हुई सही अली अकबर बड़ोई भाई हमें सुन रहे हैं सकरन से खुश आमदीद भाई जान फहीम कहते हैं असावट ऑलरेडी अवेलेबल आए छोकरी जाई बुधा तो केड़ो प्रोडक्ट बतू थव हाउ हाउ मुखे याद आणे न्यूज़ ब्रेक जो टाइम थियो आहे न खपे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे तव्हां काॾे न वञिजो हिते वेठा हुजो मां उहो वञी उहो मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो था कोन ॿुधायो त सही ख़बर त पवे सोणा थिया आहियो या कोन

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: आज सिंध एमबीएन लागापियल कानून लागू कंदड़ इदारन जे सरबराहन जी शिरकत, मौजूद सिक्योरिटी सूरतहाल दहशतगर्दी जे खात्मे लाइ जारी कोशिशुनि ऐं सूबे में अमुन ऐं इस्तेहकाम खे बरकरार रखण लाइ खयल कदम बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास में उभरंदड़ सिक्योरिटी चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारी ऐं जवाबी हिकमत अमलीअ जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। वॾे वज़ीर पारां लाॻापियल इदारनि खे अवाम जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण, अमुन अमान बरकरार रखण ऐं रियासत जी रिट खे मज़बूत करण लाइ हिक ॿिए सां वेझे राब्ते में रहण जी हिदायत। बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन शोबान में वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारिजी वियल खारजी दहशतगर्दनि जो अंग वधी 64 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब पाक फ़ौज, एफ़सी ऐं पुलिस जो खारजियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे। ताज़नि कार्रवायुनि में अॼु वधीक 21 खारजियुनि खे जनम भेड़ो कयो वियो आहे। जबलनि में लिकियल दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फिज़ाई कार्रवाई कई पई वञनि। 5 जुलाई खां जारी ऑपरेशन शोबान ऐं ॿियनि कार्रवायुनि में 102 दहशतगर्द मारिजी चुका। घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। मोहसिन नकवीअ चयो त मुल्क में लिकियल समूरनि दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना की लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड ई स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद। ओके जी, स्वागत करते हैं आपका। और इसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है, जरा वो भी रिपीट करते हैं दोबारा से, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने नहीं सुना, तो वो भी सुन ले ताकि वो भी जवाब दे सके, ठीक है। तो आज मैंने जो आप लोगों से सवाल पूछा है टॉपिक के प्रोग्राम का, वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद उस इंसान को सब कुछ भूल जाता है, वो सारी चीजें भूल जाता है जो भी उसकी लाइफ में हुआ, वो कौन है, वो कहाँ रहता था, उसको कुछ नहीं होता पता। समझ रहे हैं, आपने तो ये चीज बिल्कुल नोटिस करी होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एक इंसान अपनी याददाश्त जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है, तो उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है। यस, ये चीज है जो हमने पता लगानी है। दया को भी पीछे छोड़ते हैं इस बात के कि भाई पता लगाया कि क्या माजरा है। जल्दी से बताइए आपका इसके ऊपर क्या कहना है। और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो 888-1 पर आप हमें ज्वाइन करेंगे। और उसके अलावा आप हमें जो है ना वो फेसबुक पर कॉमेंट करते जा रहे हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके अलावा आज हम आप लोगों की कॉल्स भी लेने वाले हैं। तो कॉलिंग नंबर अगर देखा जाए तो कॉलिंग नंबर आप लोगों को बताते हैं। कॉलिंग नंबर है 0332 1322 and 88। ओके जी, आप लोग जब तक कॉल करें तो मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ थोड़ा सा जी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। सो जी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो अभी जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को कैसे बढ़ाने वाला है। तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम, सबसे पहली बात तो ये है कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, हम नॉर्मल से प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो जनाब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक है, सेंसिटिव टाइप के लिए भी है, और इसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है, जो कि भाई पाकिस्तान में 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि वाइटामिन ई बीड्स से तैयार किए गए हैं, तो उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आती है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये प्रोडक्ट आपको लगेगा, जो कि वाकई है, और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी क्वालिटी है। अगर देखा जाए तो पैकेजिंग के हिसाब से बात करें तो पैकेजिंग भी बहुत मस्त है जनाब। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है अगर आप इस्तेमाल करती है तो आपको 2 रातों में जो है वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप 2 रातें लगाना चाहते हैं, 2 रातें आप लगाने वाले हैं, तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप करें और आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो पैरों की है वो कम कर देता है, और चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश बन जाता है। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितनी भी चीजें ऐड की गई हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर लगाइएगा, और साथ में डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल भी कीजिएगा, क्योंकि जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है, और उसके अलावा हाइड्रेट

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: क्या आप जोड़ो
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

saya कहती हूं अम्मी मैं मनोज हूं कि जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना भी दे ले। देखिए मोहलत।

क्योंकि ये जो है ना वो उन लोगों के लिए भी है. ज्यादातर मैं उन लोगों को हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमें कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं, तो उनके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है क्योंकि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है. और डॉक्टर्स यानी कि जो भी चीज आप लोगों को बता दें तो आंखें बंद करके आप यकीन कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. तो बिल्कुल जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी. और खूबसूरती में जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके चेहरे पर जो है ना वो कोई भी निशानात हो या फिर इस तरह का सीन बन चुका है कि आपके लोगों की स्किन जो है वो काफी ज्यादा डल हो चुकी है, आपकी स्किन काफी जो है ना वो ऐसी रूखी सूखी सी लगती है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 दिनों में आप इस्तेमाल करके वाजे जो इसके नतायज देख सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है ना जदीद अज्जा शामिल है, जैसे कि अल्फा आर्बुटीन है, और जनाब उसके अलावा कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, और उसके अलावा वाइटामिन बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है. इतनी सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं तभी जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए बन गई है. तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करके देखिएगा, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने, खास करके वो लोग जिनके चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है. और ये बात है कि अगर लोग जो है ना ये ना समझ लें कि भाई ये अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है तो सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए है, तो ऐसा भी नहीं है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. सेंसिटिव लोगों को ज्यादा मैं हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि उनको भी पता हो कि भाई हमारे लिए भी फाइनली कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं. और उसके साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, और फेस वॉश भी आप आजमी परचेज कीजिएगा. ऐसा ही कि आप फेस वॉश लगाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा. और फेस वॉश की अगर बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है. तो अगर आप भी कोई अच्छा और कोई प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है. और डी स्किन का फेस वॉश वाकई बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई करके देखिएगा. इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में है और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वेलकम करते हैं. और साथ ही साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी जरा बताते हैं जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है. तो आज के प्रोग्राम का मैंने आप लोगों से सवाल कुछ यूं पूछा था कि आप मुझे बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाता है, काफी लोगों की जो है ना वो याददाश्त चली जाती है, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, फिर उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है. ये बात थोड़ी सी जो है ना वो सोचने वाली है, जिसके ऊपर आज हम तबसरा कर रहे थे. और अगर आप हमारे साथ मौजूद है, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा. तो फेसबुक वाले लोग जो है पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, भाई आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को मेंशन करें ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं. ओके जी, अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि हम कहां से जाकर परचेज करेंगे, प्राइस वगैरह क्या है प्रोडक्ट की, या फिर कुछ भी अगर आपको ऐसा डाउट है जैसे आप समझते हैं कि अगर ये बात हमें सिद्रा से नहीं पता चल रही, तो आप वो पूछ सकते हैं. जो नंबर आपको अभी बता रही हूं उसके ऊपर आप रابطہ कीजिए, उनसे मजीद मालूम आप ले सकते हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हैं. तो कॉलिंग नंबर है जनाब 03, कॉलिंग नहीं बल्कि हेल्पलाइन नंबर है 03 15 799 0595. बुढ़ी 1500 1599.

ओके जी, कुछ लोगों के कमेंट्स ऊपर चले हो गए होंगे, तो जिनको लगता है कि ये मेरा कमेंट नहीं अभी तक पढ़ा तो वो जरा दोबारा मुझे शेयर कीजिए. फरहान अली मीरानी हमारे साथ, फरहान अली मीरानी कहते हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू जी, आपको खुश आमदीद करते हैं.

ओके जी, सो किशोर भाई कहते हैं कि जब हम 2-3 साल के होते हैं तब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी जबान क्या है, हम सिंधी है या उर्दू स्पीकिंग है? ये एक नेचुरली सामने वाले को बोलता देकर ऑटोमेटिक हमारी जबान वही बोलती है, समझ गई या अगली भी गई? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गई जो आप कहना चाहते हैं, इसे दरअसल शेडोविंग कहते हैं, जो हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि उसको जो है ना वो मसल में

जो ना वो फिट कर देती है, तो सही बात है। इसका थोड़ा सा टेक्निकल जवाब हो सकता है, लेकिन अगर हम फन में लें तो सही है। समझ गए होंगे। अच्छा, और ये है जी फरहान अली मीरानी, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और फहीम कहते हैं हमने वाइट एश लवली क्रीम ले ली, अच्छा, और एक फेस वॉश सर खाली जूने जो को भेजा है, चलिए जी जबरदस्त हो गया। और उनका अलावा है जी मूसा एम के कोरी, कहते हैं सलाम जी, वालेकुम असलाम, आमिर अली हमारे साथ हैं, आमिर अली बलोच राम कंबर। ओके जी, सो आपको भी वेलकम करते हैं आमिर अली, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। अच्छा, दीदार अली बिरोही भाई हैं, कहते विलेज खान मोहम्मद बिरोही से प्लीज प्ले सॉन्ग बिरोही। ओके आई विल ट्राई। शफकत अली खान हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रही हूँ। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि तव्हांजे प्रोग्राम में अचण जी आदत जो आ सिर वञे या आदत वञे वञे नन्ना बाबा बई चीजूं हुजन सलामत। और लियाकत रही थी, क्या बात है। कोई नहीं कोई नहीं।

सुमित जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने सुना। एक और ब्यूटीफुल गाना हमारी लिस्ट में है जनाब, जो कि ओएसटी होने वाला है। ओके जी, तो ये भी सुनेंगे और साथ साथ है हमारे साथ, गुड इवनिंग, हाय हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ताफ भाई आपको वेलकम करते हैं। चाचा खालिद आ चुके हैं, कहते हैं बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, सॉन्ग की रिक्वेस्ट है प्लीज प्ले। साबित करे छड़ेई परायो नेट परायो थिंदो आई लीडे, कहते हैं डेडिकेट। अच्छा चले टाइम बच गया तो लगाते, नहीं तो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे। और नदीम अली शेख है, मुंतजर मुतहिर शेख फ्रॉम विलेज भीरू, आप ही सिदरा। अच्छा अहमद मुगल के गाने की आपने फरमाइश कर दी है, कहते हैं हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और अल्ताफ हुसैन राहे जो है नवाब शाह सिदरा, बाजी आप कैसी हैं, शो तो आपका वेरी नाइस है। बाजी बलोची गाना प्ले कर जो, डेडिकेट सदाम राहे जो, सजाद राहे जो एंड आपको, बहुत शुक्रिया जी। और मेरे पर खास अब्दुल्ला बहर ने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अब्दुल्ला महर भी कहते हैं कि मैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाता हूं, तो बिल्कुल जी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाते रहिए और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करें। अच्छा वैसे जो हम कॉल्स लेते हैं ना, तो कुछ भाई लोग कॉल पर आते हैं जो कहते हैं कि भाई डी एस क्रीम, अब ये है कि इसका नाम डी एस नहीं है। जब आप दुकान पर जाते हैं ना, आप लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट का नाम नहीं होता ना पता, तो दुकानदार समझता है कि इसको उल्लू बनाना तो बहुत आसान है, तो वो आपको उल्लू बना देता है। ऐसा मत किया करें, आपको प्रोडक्ट का नाम सही से पता होना चाहिए, डी एस नहीं है, डी स्किन है। और वो कहते हैं ना नकालों से होशियार है। तो बिल्कुल वैसे ही, अगर आप मार्केट जाएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करें, ठीक है, नाम आपको आना चाहिए।

पता नहीं चला क्या इश्क है इश्क है ये तो सुन लिया। अच्छा जी, और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको भी। और उनका अलावा एमन सारी कहते हैं नोट प्रिपेयर फॉर कॉलिंग, लग गई कैसे मैं इस शौक में शॉक हूँ। ऐसे ही होता है, अच्छी चीजें जिंदगी में से सडनली आ जाती हैं, फिर इंसान जो है ना वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। लेकिन अब आप ऐसे ही कोशिश करते नहीं, आपकी कॉल लगती रहेगी।

0: इतनी बुरी मौत अल्लाह बचाए. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट एज के लगा रहे हैं या फिर डी स्किन के लगा रहे हैं. और साथ साथ अनवर भाई कहते हैं कि चांद से तो नहीं अलबत्ता सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो वो सच में आपके चेहरे का नूर चुरा लेगा. बिल्कुल जी, ये हकीकत बात करी अनवर भाई ने, तो जरूर पर्दा कीजिए. और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं.
1: जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे.

यानी कि हमने ये गाना सुना तो उस गाने से हमने ये सीखा कि यार की गली में मर जाना इश्क है, अगर आप यार की गली में नहीं मरते तो वो इश्क नहीं है। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अली हसन हमारे साथ फ्रॉम कोयटा कहते हैं, दुआ आदाब सलाम खुश आमदीद, वेलकम शो इज नाइस और गुड आफ्टरनून, खुश आमदीद अली हसन आपको वेलकम करते हैं। और अनवर भाई कहते हैं जो प्रोग्राम न पया बुधी सगू। अच्छा तमावट थोड़ा नेटवर्क जो इशू आ चलें, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपको हम वेलकम कर देते हैं। आतिफ असलम का गाना आ चुका है जी लिस्ट में और ये गाना हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक भी होने वाला है। और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद कहते हैं, थैंक यू जी चाचा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, मजे में हैं और कहाँ बिजी थे। बिलाल कहते हैं कि पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, अब उनका भी काम करने को दिल नहीं करता। यस, इसे कहते हैं चेंजिंग, तब्दीली। हर इंसान को अपनी जिंदगी में चेंजिंग लानी चाहिए।

अच्छा चाचा खालिद, आपने टॉपिक के ऊपर जवाब दिया है, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच. कहते हैं मैंने AI यूज नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए. और दर्द दिल कहती है कि कहाँ से लाती हो ऐसा टॉपिक चंदा, दिमाग का दही बना दिया तुमने, सच बताओ. और उसका सही है, थैंक यू. एम अंसारी कहते हैं बेनजीर हिरा सनोबर भी चुपके से यू को सुन रही हैं. बेनजीर हिरा और सनोबर सबको वेलकम कहते हैं. ओ ये तो गुन्ना लिसनर है.

गई जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये भी बता दिया करें। निदली कहती है यस मैं भी ट्राई कर रही थी, मैं नहीं कर सकती, क्या तुम कर सकती हो? बिल्कुल जी। अच्छा बिलाल, लगते हैं कि कुछ लोग और कुछ चीजें हमारी नहीं होती, हम सिर्फ कुछ अरसा उनके साथ चल रहे होते हैं, फिर एक दिन जिंदगी आकर कहती है अब वापस करो, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा आमिर अली को हमारा शो पसंद आ गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी भक्त अली सियाल हमारे साथ कहते नाइस योर शो, थैंक यू। अच्छा मोहम्मद सलमान कहते ओके बाबा ओके डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हाँ जी नाम सही लिया करें, वरना दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट थमा देगा जो सूटेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट। अगर ऐसा सीन हो गया ना कि दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट दे दे, तो फिर आप समझ जाएं कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना, यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले रहे हैं तो उसके ऊपर डॉक्टर माई जो फोटो था, डॉक्टर माई जो फोटो हुए वट जो न हुए न वट जो, समझो था। ओके जी, गुलाम रहीम बलोच भाई भी हमारे साथ हैं, खुश आमदीद। और यमीन केरियो है, यामीन केरियो है सऊदी अरबिया से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा फहीम कहते हैं जब मेरी कॉल लगेगी मुझे डर है आप मुझे कंफ्यूज ना करते, नहीं मैं तो अगले इंसान को काम रखने की कोशिश करती हूँ। और नजीर लाया हमारे साथ मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अच्छा सुन तो लेना, पहले सुन तो ले। हाँ जी, तो टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि हम अब जाने लगे हैं। ओके जी, सो वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझी थींदी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। ओके सो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिएगा, और जाते जाते जरूर कहकर जाऊंगी कि आप सब लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लाजमी ट्राई करके देखें। अगर आपको मजा ना आए तो बताइएगा, क्योंकि वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए। और जी नोरी भी हमारा शो सुन रही है, क्या बात है, नोरी को तो मैं भूल ही गई थी। ओके सो वरी 5 बजे वाली प्रोग्राम में मिलूं था पांच, ओए दूसरों का ख्याल रखना कि ठीक गलती थी मुझे तो माजरत कहूं था, जिंजा गाना रेजी बयान मैसेजेस रेजी बयान कुछ भी रेजी बयान तो नहीं माजरत कहूं था। सो मुकलानी ना ही बाबू सिंह सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कल देश संबुरन दहशत गर्दन के खत्म कई वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर जेडी वेंस ए परदेही वजीर मार्क रोबियो के ईरान से सफारती राबता ए गालियों जारी रखने की हिदायत। पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तां मिसाइल की भी धमकी दई छी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो अमेरिकी फौज के मुख्य कत्ल करण की सूरत में ईरान के धरती तां मिसाइल जो चई छो है। फौज ईरान से 1000 मिजाइल फायर करने लाय तैयार है। तेहरान के साजिश तां पोए ते हटणो पवंदो।
2: निज़ाम ईरान तरफा ईंदड़ मिसाइल्स एंड ड्रोन जो मुकाबलो कर रहा है।

ईरान ऐं अमरीका ठिकाण घटाइण सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची विच सां फोन राब्तो। ॿिन्ही अॻवान पारां विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसहाक़ डार चयो त ख़िते में अमन इस्तिहकाम लाइ सफ़ारतकारी वाइद रस्तो आहे। ॿिन्ही परडे॒ही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जी इतफ़ाक़।

ईरान खे पंहिंजे फैसले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते बयान में चयो आहे त ईरान ग़लति फ़ैसिलो कयो, हाणे खेसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेनकाम जो पैगाम बि शेयर कयो। चयो वियो हो त वाइदो पूरो कयो या वाइदे जी भञकड़ी जी क़ीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीबाफ चयो आहे त हिक तरफ़ी वाइदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे, पंहिंजा कयल वाइदा पूरा कयो या वाइदनि जी भञकड़ी जी क़ीमत अदा कयो। हक़ीक़त तव्हांजे साम्हूं आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत में तब्दीली ऐं नवनि चेहरनि जी आमद जो इम्कान। ज़रियनि मूजिब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ काबीना में तब्दीली बाबति मुशावरत मुकमल करे छॾी आहे। नवनि शामिल थींदड़ मेंबरनि खे मुमलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारतुनि जी कारगर्दगी ते सवाल उथारिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमिन कंदड़ वाद न थियण सबबि गणती जो इज़हार कयो आहे। चांवर बटालू फ्रूट जी एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो बि इज़हार कयो। वफ़ाक़ी राजधानी इस्लामाबाद में तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति, ख़राब मौसम सबबि केतिरियूं उॾामूं मुतासिर। मौसमियातकार जो चवण आहे त अॼु बि इस्लामाबाद, पंजाब जा मथियनि वारनि इलाक़नि, बलूचिस्तान, केपी में कुझु हंधनि ते तेज़ बरसाति जो इम्कान आहे।

0: खैरपुर में पीपल्स पार्टी पारा मरसू सिंधु ना डेसू जो उनवान हेठ रैली अगवणन जो सिंधु दरिया सिंध की सुणप ज़रात मैशियत है। सिंध तास मुआदे से दरिया के पानी बाबत थियल आलमी मुआदे जो एतराम किया वे। भारत मुआदे की भंजकड़ी करण या सिंधु के पानी से धारवाण की कोशिश कई तो पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम कें माफ न कह। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में सिंध के पानी सिंधु दरिया ए अवाम के आयनी हकन के तहफ़ लाए जदोजहद जारी रही। सखर में मर जतो ही खूनी तकरार जर गया जी फतवा अज बुधाई वेंदी। सर्किट हाउस में सखर में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम। पुलिस की वही नफरी मुकरर। बिन्हीं धुरन जहा मू चंगा मुड़ सर्किट हाउस पहुंचन शुरू थी वह। अलीगौर खान बहर इब्राहिम खान जतोई की अगवाणी में फतवा बुधाई वेंदी। टिन मकतूलन बाबत एतराज सबब मुलतवी थियल फतवा अज जाय थे जो इम्कान। मर जतोई तकरार में हेल तीन पंजवंजा इंसानी जानू जया थी चुकी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 4056 तौकीर अहमद 0306 16 23 793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राबते जे लाइ 0320180003।
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 0300338 5569।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

गिरफ़्तार कयल पंजनि जवाबदारनि जो बि रिमांड न वरितो। जवाबदारनि खे जेल कस्टडी कयो वियो। फरियादनि जे वकील जो चवणु आहे त केस में वीह जवाबदार नामज़द आहिनि। हिन वक़्त ताईं पुलिस का बि अॻबराई न आहे कई। जांच ऑफिसर फरियादी सां बि राब्ते में न आहे। गिरफ़्तार कयल सतनि जवाबदारनि मां ॿिनि खे एफ आई आर में नामल शामिल हुअण करे आज़ाद कयो वियो। कराची रसी जे सिंधी शोबे में 35 खां वधीक जवाबदारनि हमिलो करे उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं सिंधी शोबे जे मुलाज़मनि खे तशद करे ज़ख़्मी कयो हो। अमरीकी फ़ौज जे ताज़नि हमलनि बाद पासवान इनकलाब आबन हुरमज़ बंदि करे छॾियो। ईरानी फ़ौज बिना इजाज़त जे गुज़रण ते साइप्रस जे बहरी जहाज़ खे नाकारा बणाए छॾियो। रदेअमल में अमरीकी फ़ौज ईरान जे साहिली इलाक़े असलविया ऐं बोशर शहर ते फिज़ाई हमला। सेनकाम चयो त साइप्रस जे जहाज़ ते ईरानी हमले सबबि ईरान ते हमला कया विया। ईरान ते हमलनि जो टियों मरहलो मुकमल थी वियो आहे। हमलनि में 140 फ़ौजी हंधनि ते समेत मजमूई तौर ते 300 हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे।

ईरान ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाई जारी खिते में मौजूद अमरीकी फौजन ते हमला पाजरान इनकलाब पारा औरदन के प्रिंस हसन एयरबेस में कमान इनकार दावा कई तो ओमान के दखम बंदरगाह से अमरीकी लॉजिस्टिक तेल फराम कर मरकजन के निशानो बनाया है। यूएई की दिफा वाले वजीर चो तो मुल्क जो दिफाई निजाम ईरान तरफा ईंदड़ मिजाइल एंड ड्रोन जो मुकाबलो कर रहा है। ईरान अमरीका चिकटान घटाण ए सगुर जो मुजाहरो कन नायब वजीर आजम इसहाक डार ईरानी परदेही वजीर अब्बास राख्ची विच में फोन ते राबतो बिन्ही अगवान पारा विच ओभर जी सूरत हाल ते गाल बोल इसहाक डार चयो त खिते में अमन इस्तेहकाम लाइ सफारतकारी वाहिद रस्तो आहे। बिन्ही परदेही वजीरन पारा राबतन में रहण जी इतफ़ाक़

ईरान खे पंहिंजे फैसले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते बयान में चयो त ईरान ग़लति फैसलो कयो, हाणे खेसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेंटकॉम जो पैगाम बि शेयर कयो। हो त वाइदो पूरो कयो या वाइदे जी भनकड़ी जी क़ीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कारीबाद चयो त एकतरफ़ी मुआहिदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे। पंहिंजा कयल वाइदा पूरा कयो या वाइदनि जी भनकड़ी जी क़ीमत अदा कयो, हक़ीक़त तव्हां जे साम्हूं आहे। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी, वधीक टे ख़ारिजी दहशतगर्द मार जी विया, अंग वधीक 105 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज चवण आहे त पाक फ़ौज एफ़सी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जे गॾियल ऑपरेशन में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 7-8 थी वियो आहे। 5 जुलाई खां जारी शाबान ऑपरेशन ऐं ॿियनि ऑपरेशन में 105 दहशतगर्दनि खे जनम भीड़ो कयो वियो। आख़िरी दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत में तब्दीली ऐं नवनि चेहरनि जी आमद जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ काबीना में तब्दीली बाबति मुशावरत मुकमल करे छॾी आहे। नवनि शामिल थींदड़ मेंबरनि खे ममलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो बि इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारत जी कारकर्दगी ते सवाल उथारिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमैन कंदड़ वाद शामिल न थियण सबबि गणती जो इज़हार कयो आहे। चांवर बटालू फ्रूट्स जे एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो बि इज़हार कयो। वफ़ाक़ी राजधानी इस्लामाबाद में तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति ख़राब आहे। खैरपुर में पीपल्स पार्टी पारां मरसूं बरसूं सिंधू न ॾिसूं जे उनवान हेठि रैली। अॻवाणनि जो त सिंधू दरिया सिंध सुञाणप ज़रात ऐं मैशत आहे। सिंध तास मुआदे तहत दरिया जे पाणी बाबति थियल आलमी मुआदे जो एतराम कयो वञे। भारत मुआदे जी भञकड़ी करण या सिंध जे पाणी ते धारो हणण जी कोशिश कई त पीपल्स पार्टी ऐं सिंध जे अवाम खेसि माफ़ न कंदो। बिलावल भुटो ज़रदार जी क़यादत में सिंध जे पाणी सिंधू दरिया ऐं अवामी जे आइनी हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ जदोजहद जारी रहंदी। सकर में मर जतोई खूनी तकरार जी जरगे जी फतवा अॼु ॿुधाई वेंदी। सर्किट हाउस सकर में सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम, पुलिस जी वॾी नफ़री मुक़रर। ॿिन्ही धुरनि जा माण्हू चङा मुड़ सर्किट हाउस पहुचण शुरू थी विया। अलीगौर ख़ान मर ऐं इब्राहिम ख़ान जतोई जी अॻवाणी में फतवा ॿुधाई वेंदी। टिनि मक़तूलनि बाबति एतिराज़ सबबि मुल्तवी थियल फतवा जारी थियण जो इम्कान। मर जतोई तकरार में हेल ताईं 55 इंसानी जानियूं ज़ाया थी चुकियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अॼु ऐं सुभाणे किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिबि सिंध जे कुझु इलाक़नि में मिटी जे तूफ़ान जी बि अॻकथी करे छॾी। दादू कंबर शहदादकोट ज़िलनि में अॼु कुझु हंधनि ते हल्की वसकार जो इम्कान। मिटी जो तूफ़ान बि थी सघे थो। सुभाणे शिकारपुर कश्मोर सकर शेजबंदराबाद घोटकी ऐं सुफ़ोज़ में बरसाति जो इम्कान। सामूरी पटी वारनि इलाक़नि में हल्की बरसाति थी सघे थी। कराची में ईंदड़ 3 ॾींहनि दौरान मौसम झुड़ाली ऐं घिमिल रहंदी। सकरनि ऐं मेड़ में प्रिया कुमारी उजाला परवीन सोलंकी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। मेड़ में उजाला परवीन जे वारसनि चयो त 99 ॾींहं गुज़रण बावजूद पुलिस ॿारी बाज़ियाब न कराए सघी। सकरनि में एसयूपी जे अॻवाणनि पारां प्रिया ऐं उजाला जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी कैंप 3 ॾींहं बि जारी। अॻवाणनि जो जवाबदार बाज़ हुजण सबबि पुलिस कार्रवाई न थी करे ॿारियूं बाज़ियाब करायूं वञनि। बानसदाबाद में कणक ज़खीरो करणनि ख़िलाफ़ 2 ॾींहं बि कार्रवायूं। असिस्टेंट कमिश्नर जी अॻवाणी में जोई रोड ते क़ाइम गोदाम ते छापो। कणक जूं 6,000 बोरियूं हथ कणक सरकारी गोदाम ते मुंतकिल करण दौरान वापारनि ऐं ज़िले इंतिज़ामिया जे अमलदारनि विच में चकरियूं।

0: कादरपुर में गरम तेल उछलाए जख्मी किया निगरी सानिया भुट्टो की हालत खराब निगरी कोट के अस्पताल में इलाज हेठ वारस माली मुश्किलातुनि जो शिकार मुतासर खानदान जो सरकारी खाते निगरी जो बेहतर इलाज कराने जो मुतालबो आई जी सिंध के नोटिस बावजूद मुख्य जवाबदार लुत्फ भुट्टो अजा तक गिरफ्तार नी सको वारसन चवण है निगरी के बेहतर इलाज लाए फौरी तौर से गंबड़ के अस्पताल मुंतकिल किया वे। शिदादकोट के मुख्तलिफ पाड़न में पानी न पहुंचने खिलाफ एसयूपी कारकुनन जो एहतजाज अगवाण जो तजरीब मोहल्ला यार मोहम्मद बिरोई गोट मसण मोहल्ला कालू मकान खारानी मोहल्ला समेत बिन मोहल्लन में वाटर सप्लाई का पानी बिन महीनों का बंद है शहरी अजाब भोगे रहा है। केतरा ही भेरा म्यूनसिपल चेयरमैन के लिखित में शिकायतों क्यों पर पानी न मिलो हुकूमत शहर के पानी फराहम करने लाए कदम खड़े। पीरचो गोट में जेड़े में मारजी पल चैन गर्भातन के वारसन जो कातिलन की गिरफ्तारी लाए एहतजाज नारे जात्रन में छेड़ दौरान कतल थियल जीजा रायबा फतेह मोहम्मद राजा के वारसन एहतजाज कयो मुजाहिरन जो हथियारबंदन संगाजी तकरार तक घर से हमलो कर चैन गर्भातन के कतल किया है। चार ढी गुजरण बावजूद पुलिस न केस दाखिल किया है नई जवाबदार गिरफ्तार किया जवाबदार अनवर नारे जो सलीम जब्बार ए बिन के गिरफ्तार कर इंसाफ फराहम किया वे। मीरपुर माथलो में अगवाणन की निकाली है प्रिया कुमार की बाजियाबी लाए जसाब बशीर खान कुरैशी ग्रुप पारा रेहड़ी अगवाणन जो सारी सिंध अंदर जमीन से धारिया काबसी रहा है सिंधन के बेघर कर पे वे घोटकी में यूनिवर्सिटी कायम कई वे अगवाणन के निकाली दई प्रिया कुमारी के बाजियाब कराए बया मसला हल कया वन। बख्शापुर में बीएस फीडर के गुजरियल ढी का लगल घारो बंद न थो गोठण जो एहतजाज गोठण चवे तो घारे से पानी आबादी दन लगो है घारो लगंदे ही 48 कलाक गुजरी पाया पर अजा तक घारो बंद ना कह वो नोटिस वी बीएस फीडर के लगल घारो फौरी तौर से बंद किया वे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

बलूचिस्तान में ऑपरेशन शापान जारी वधीक टे खारजी दहशतगर्द मारजी विया अंग 105 थी वियो सिक्योरिटी फोर्सेस जो चवण है तो पाक फौज एफसी बलूचिस्तान ए पुलिस जो गडियल ऑपरेशन में मारजी वियल दहशतगर्दन जो अंग वधी 67 थी वियो है 5 जुलाई का जारी शाबान ऑपरेशन ए बियन ऑपरेशंस में 105 दहशतगर्दन के जन्म भेड़ो कर वियो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तई बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहो।

अमरीकी फौज के ताजन हमलन बाद पासारन इनकलाब अपना हुर्मुज बंद कर छो। ईरानी फौज बिना इजाजत के गुजरण से साइप्रस के बहरी जहाज के नाकारा बनाए छो। हद्देमल में अमरीकी फौज ईरान के साहिली इलाके असोलिया बोशहर से फसाई हमला। सेंटकॉम चाहे तो साइप्रस के जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान से हमला किया वा। ईरान से हमलन जो टियों मरहलो मुकम्मल थी है। हमलन में 140 फौजी हंधन समेत मजमू तौर 300 हंधन के निशानों बनाया है।

ईरान ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जूं बि जवाबी कार्रवाइयूं जारी। खिते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डनि ते हमला। पासान इनकलाब पारां उर्दन जे प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करण जी दावा। बहरीन ऐं कतर जी राजधानी में बि धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। पासान इनकलाब दावा कई त ओमान जे दुकम बंदरगाह ते अमरीकी लॉजिस्टिक ऐं तेल फराहम कंदड़ मर्कज़नि खे निशानो बणायो आहे। यूएई जे दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त मुल्क जो दिफ़ाई निज़ाम ईरान तर्फ़ां ईंदड़ मिसाइल्स ऐं ड्रोन्स जो मुक़ाबिलो करे रहियो आहे।

ईरान के पेंजे फैसले की कीमत अदा करनी पवंदी। अमरीकी दिफा वाले वजीर पेट हेक्सेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ईरान गलत फैसलो कर हाँ कैस कीमत अदा करनी पवंदी। अमरीकी दिफा वाले वजीर सेंटकॉम जो पैगाम भी शेयर कर।

चयो हो तो वायदो पूरो कयो या वायदे जी भजकड़ी जी कीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जो स्पीकर बाकर कारीपाप चयो आहे त एक तरफी वायदन जो दौर खत्म थी चुको आहे, पंहिंजा कयल वायदा पूरा कयो या वायदन जी भजकड़ी जी कीमत अदा कयो, हकीकत तव्हांजे साम्हूं आहे।

वफ़ाक़ी हुकूमत में तब्दीली ऐं नवनि चेहरनि जी आमद जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ काबीना में तब्दीली बाबति मशावरत मुकमल करे छॾी आहे। नवनि शामिल थींदड़ मेंबरनि खे मुमलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारतनि जी कारकरदगीअ ते सवाल उथिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमइन कंदड़ वाध न थियण सबबि बि घटिके जो इज़हार कयो आहे। जानवर बटालू ऐं फ्रूट्स जी एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो इज़हार बि कयो आहे।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

इंसानी जानियूं गड़काईंदड़ मेहर ऐं जतोई धुरियन में खूनी तकरार जी झिरके जी फतवा जारी। मिनी धुरियन ते मजमूई तौर 18,51,16,000 रुपया दंड मुकरर। सरदार अली कोहर मेहर ऐं डॉक्टर इब्राहिम जतोई जी निगरानी में जारी कयल फतवा में फी खून जे बहाव 25 लख रुपया मुकरर। जतोई बिरादरी जे हमले में माजी वियल मेहर बिरादरी जे घोट जो 145 लख मुकरर। झिरके में मेहरन जा 38 खून 55 जख्मी ऐं जतोई धुर जा 27 खून ऐं 37 जख्मी साबित थिया। जतोई धुर मथां मजमूई तौर 9,68,16,000 रुपया दंड विधो वियो। मेहर धुर मथां मजमूई तौर 8,83,00,000 रुपया दंड मुकरर कयो वियो। पुट थियल सामान जी वापसी ऐं नुक़सान थियल सामान जे काथे बाबति MNA शहरिया मेहर ऐं अॻूणे MPA बी राबत जतोई जी सरबाई में कमेटी कयनि।

अमरीकी फौज के ताजन हमलन पर पासारन इनकलाब अपना हजमत बंद कर छो। ईरानी फौज के बिना इजाजत से गुजरण से साइपर से पेरी जहाज के नाकारा बनाए छो। रद्द अमल में अमरीकी फौज का ईरान के साहिली इलाके अस्लोविया वो शहर से फजाई हमला। सेंटकॉम है साइप्रस के जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान से हमला किया गया है। ईरान से हमलन जो टियों मरहलो मुकम्मल थी वो है। हमलन में 140 फौजी हंधन से मजमू तौर 300 हंधन के निशानों बनाए हुआ है।

ईरान ऐं अमरीका चिकताण कटाइण ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्षी विच में फोन ते राब्तो। ॿिन्ही अखबारनि पारां विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई। इसहाक डार चयो त ख़िते में अमन इस्तेहकाम लाइ सफ़ाकारी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही परडे॒ही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। ईरान खे पंहिंजे फ़ैसिले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते चयो आहे त ईरान ग़लति फ़ैसिलो कयो, हाणे खेसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेंटकॉम जो पैगाम बि शेयर कयो।

चयो हो तो वायदो पूरो कयो या वायदे जी बजकरी जी कीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिबाफ चयो आहे त हिक तरफ़ी वायदनि जो दौर ख़तम थी चुको आहे। पंहिंजा कयल वायदा पूरा कयो या वायदनि जी बजकरी जी कीमत अदा कयो। हक़ीक़त तव्हां जे साम्हूं आहे।

शहबाज़ काबीना में तब्दीली बाबत मुशावरत मुकम्मल कर छी आहे। नवनि ऐं शामिल थींदड़ मेंबरनि खे मुमलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारतनि जी कारकरदगी ते सवाल उथारिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमइन कंदड़ बात न थियण कयो आहे। जानवर बटालू ऐं फ्रूट्स जी एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो इज़हार बि कयो।

कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: सो जेतिरो थी सघे त उन्हनि खे जेको आहे सो ख़ुशि रखंदा कयो वरी
1: ऐं असीं अव्हां खे इहो चवंदासीं तव्हांजा जेके ॾींहं आहिनि जेके जेके वेहो था हिते मेहरापुर शहर में असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे इहो ब्रीफ कंदा हलो, इहो रिपीट कंदा हलो, तव्हांजो नंबर या तव्हां सां केरु राबितो करे कहिड़े नंबर ते राबितो करे थो, कहिड़ो ॾींहुं मां चेकअप फ्री रखियो आहे।
0: जी बिल्कुलु, हिन में हिकिड़ो ॾींहुं ज़रूरु यादि रखिजो त अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। अंगारे जो ॾींहुं जेको आहे सो आउट ऑफ सिटी हूंदा आहियूं, इन जे करे अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। बक़ाया हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो, छंछर, आचर, सूमर, अरबा, ख़मीस असां मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप ते मौजूदु हूंदा आहियूं। टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं। कॉन्टेक्ट नंबर 0301-2196-8051, इहो ज़रूरु यादि रखिजो। ऐं हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, यानी 3 ॾींहं जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं। हिन में मरीज़ खां चेकअप फीस नाहे वरिती वेंदी, बाक़ी मरीज़ दवाऊं जेको आहे सो पंहिंजूं ख़रीद कंदो आहे, बाक़ी चेकअप फीस हुनखे माफ़ हूंदी आहे।
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। दोस्तो, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, असांजे स्टूडियो में मौजूदु हो सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जेको सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहियो हो। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं, मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। इन हिते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। दोस्तो, असीं इहो ज़रूरु चवंदासीं त पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे वालदेन जो, पंहिंजे नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, पाड़े वारनि जो, सभिनी जो ख़्यालु रखो। जीव आहे त जान आहे, सिहत आहे त सभु कुझु आहे। हिन वक़्तु तमामु घणी गर्मी आहे, गर्मी खां पंहिंजो पाण बचाव करियो। इन ते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त। दुआउनि में यादि रखंदा, अलाह नगहबान, अलाह वाही।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: निगरानी में जारी कल फतवा में फी खून के बहाव 25 लाख रुपया मुकर्र। जतोई बिरादरी के हमले में माजी वेल मेहर बिरादरी के घोट जो 145 लाख मुकर्र। जिरगे में मेहरन जा 33 खून 55 जख्मी ए जतोई धुर जा 27 खून ए 37 जख्मी साबित थे। जतोई धुर मथा मजमू तौर 9,68,16,000 रुपया दंड विधो वो। मेहर धुर मथा मजमू तौर 8,83,00,000 रुपया दंड मुकर्र कयो वो। पुटियल सामान की वापसी ए नुकसान थियल सामान के काथे बाबत एमएनए शहरियार मेहर ए अगुणे एमपीए बी राब जतोई की सरपाई में कमेटी कयम।

0: ईरान ऐं अमरीका चिकताण कटाइण ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डारथी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची विच में फ़ोन ते राब्तो। ॿिन्ही अख़बारनि पारां विच ओभर जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल कई। इसहाक़ डार चयो त ख़ते में अमन इस्तक़ाम लाइ सिफ़ातकारी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही परॾेही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। ईरान खे पंहिंजे फ़ैसिले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते चयो आहे त ईरान ग़लति फ़ैसिलो कयो, हाणे खेसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर सेंटकॉम जो पैगाम बि शेयर कयो।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

मरसू सिंधू नलेसू जगवान हेठ रेलियूं भारत जी आबी दहशतगर्दीअ जी सख़्त मज़म्मत कराची हैदराबाद पीपलखास टंडोलयार बदीन दादू खैरपुर ऐं ॿियनि शहरनि में रेलियूं लाड़कानो टंडो मकान जेकबाद कनकोट शिकारपुर नौशर फिरोज मिठी ऐं मीरपुर मातेलो में पीपल्स पार्टी जूं रेलियूं उमरकोट नवाबशाह टट्टो खैरपुर पनवाकिल मिठी ऐं ॿियनि शहरनि में बि भारतीय आबी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ रेलियूं कढियूं वयूं अॻवान चयो त भारत पारां सिंध तास मुआदो हिकु तरफ़ो ख़तम करण पाणीअ जी जंग जे बराबरि आहे भारत सिंध तास मुआदो हिकु तरफ़ो ख़तम नथो करे सघे पाकिस्तान पंहिंजे सिंधु दरिया जी हिफ़ाज़त करण ॼाणे थो मारका हक में शिकस्त खां पोइ भारत आबी जंग करण चाहे थो मारका हक में भारत खे इबरतनाक शिकस्त जी सिंध तास मुआदे जे मामले में बि नाकाम थींदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते दे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03005398 5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
5: बेवफा चांडिया कंबर वारा, तू साका तो पंजो शहर छदी।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
2: मेरे पापा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

अमरीकी फौजी जे ताज़न हमलन बाद वास्तारन इनकलाब अपनाई हरमुस बंद करे छो। ईरानी फौज बिना इजाजत के गुजरण से साइप्रस के पहरी जहाज के नाकारा बनाए छो। हथियमल में अमरीकी फौज जा ईरान के साहिली इलाके असलविया बोशहर से फजाई हमला। अमरीकी सेंटकॉम है साइप्रस के जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान ते हमला कया व्या। ईरान ते हमलन जो टियों मरहलो मुकम्मल थी वो है। हमलन में 140 फौजी हंधन से मजमूई तौर 300 हंधन के निशानो बनाए वो है। ईरान जो अपना हरमुस से कंट्रोल ना है। जहाजन की अचवंज जारी है। अपना हरमुस कानूनी तौर गुजरदड़ समूरन जहाजन लाए खुलियल है। अमरीकी फौज अपना हरमुस में जहाजन की अचवंज यकीनी पैण लाए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है अपना हरमुस कमर्शियल ट्रैफिक लाए खुलियल है। ईरान से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी जवाबी कार्रवाई जारी। खत्े में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे से हमला पासान इनकलाब पारा उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया हुआ। बेरन कतर की राजधानी में भी धमाकन का आवाज बुधा वह। पासान इनकलाब दावा कई तो ओमान के दक्कम बंदरगाह से अमरीकी लॉजिस्टिक तेल फ्राहम कदड़ मरकजन के निशानो बनाया है। यूएई के दिफा वारे वजीर है मुल्क के दिफाई निजाम ईरान तरफा ईंदड़ मिसाइल ड्रोन से मुकाबलो कर रो है।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ कतर जे अॻूणे अमीर जे लाॻाणे ते ताज़ियत लाइ सुभाणे कतर वेंदो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी सां शेख हमद बिन ख़लीफ़ा जी वफ़ात ते ताज़ियत कंदो। नायब वज़ीर-ए-आज़म ऐं ॿ अहम शख़्सियतूं बि वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु हूंदियूं।

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारा भारत की आबी दहशतगर्दी खिलाफ मरसू सिंधू नडेसू के उनवान हेठ रैलियों पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी की हिदायत से सिंध जिले हेडक्वार्टर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों कड़ी वयं। भारत ए मोदी की आबी दहशतगर्दी खिलाफ नारेबाजी कराची हैदराबाद मेट्रो खास टंडोलयार बदीन दादो खैरपुर बेन शहरों में रैलियों लाड़काणो टंडो मोहम्मद खान जकबाद कनकोट शिकारपुर नशर फिरोज पिछी ए मीरपुर पातेलो में पीपल्स पार्टी जो रैलियों उमरकोट नवाबशाह टंडो खैरपुर मनवाकिल मिठी ए बेन शहरों में भी भारतीय आबी दहशतगर्दी खिलाफ रैलियों कटी वयु। अगवाणन भारत पानी के हथियार तौर इस्तेमाल कर रो है मारका हक में शिकस्त का भारत आपी जंग करना चाहे तो कि सिंध तास माहदे के मामले से नाकामी थी।

0: ऐं अमरीकी सेनेटर लिंडसी ग्राहम ओचितो तबियत ख़राब थियण सबबि 71 वॾियनि जी जमात में लाॾाणो करे वियो। ॾखण कैरोलिना सां तालुक रखंदड़ अमरीकी सेनेटर लिंडसी जी तबियत ओचितो ख़राब थी, जंहिं सबबि हू लाॾाणो करे वियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां लिंडसी ग्राहम जे लाॾाणे ते दुख जो इज़हार।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर एफएम 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त एफएम मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मीरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03003385।

0: मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 आई 0242-460100
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

भारतीय हामी दहशत गर्दन जो पुसिन लड़ो हमलो पंजाबियत शहीद सिक्योरिटी जरियन मोचे पुसिन दहशत गर्दन मासूम आए हथे खाली पोरियतन के निशानो बनायो शहीद पोरियतन में मोहम्मद बिलाल मोहम्मद हसन मोहम्मद कतीब मोहसिन बिलाल शामिल हैं। दहशत गर्दन के पुसिलाने हमले में शहीद समूरन पोरियतन जो वास्तो पंजाब से है। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके के कड़ो चाड़े सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो वजी अजम शहबाज शरीफ करू वजीर मोहसिन नकवी ए वे वजीर नवाद अली शाह पारा दहशतगर्दी की मुजम्मत शहीदन के वारिसन से ताजियत जो इज़हार।

அன்னைக்கு போச்சு தாசன் ஹம்லன் பாத வாஸ்தார இன்கலாப் அப்னாய் ஹர்மஸ் பந்த் கரே சதோ ஈரானி போச் பினாய் தாசன் சே குஜன் தே சைபர் சே பெரி ஜாஸ் கே நாகாரா பனாய் சதோ ஹதே மல் மே அமெரிக்கி போச் ஜா ஈரான் ஜே சாஹிலி இலாக்கே அஸ்லவியா ஐ போச் ஷேர் தே ஃபஜாய் ஹம்லாத் அமெரிக்கி சன் காம் சயோ ஹை தா சைபர் சே ஜாஸ் தே ஈரானி ஹம்லே சபப் ईरान ते हमला कया विया है ईरान ते हमलन जो टियों मरहलो मुकम्मल थियो है हमलन में 140 फौजी हंदन ते मजमूई तौर 1300 हंदन के निशानो बणायो वियो है ईरान जो अपना हरमुस ते कंट्रोल ना है जहाजन जी अचवन जारी है अपना हरमुस कानूनी तौर घुसंदड़ समूरन जहाजन लाइ खुलियल है अमरीकी फौज अपने हरमुस में जहाजन जी अचवन यकीनी करण लाइ तैयार है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो है त अपना हरमुस कमर्शियल ट्रैफिक लाइ खुलियल है ईरान ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जूं भी जवाबी कार्रवाई जारी खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डन ते हमला पाकिस्तान इंकलाब पारा उर्दन जे प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया हुआ बेरन कतर की राजधानी में भी धमाकन जो आवाज बुधा वह पाकिस्तान इंकलाब दावा कई तो ओमान के दक्कम बंदरगाह से अमरीकी लॉजिस्टिक तेल फ्राहम कदड़ मरकजन के निशानो बनाया हुआ है यूएई के दिफा वारे वजीर चयो है त मुल्क जो दिफाई निजाम ईरान तरफा ईंदड़ मिसाइल ए ड्रोन से मुकाबलो कर रो है ईरान ए अमरीका चिकताण घटाण ए सबर जो मुजाहरो कन नायब वजीर आजम साहकार जी ईरानी परडेही वजीर अब्बास अराग़ची विच में फोन ते राबतो बिन्ही अगवाणनि पारां विच ओभर जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल साहकार चयो त ख़ते में अमन इस्तेकाम लाइ सिफ़ारतकारी पाए रस्तो आहे बिन्ही परडेही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जे ते इतफ़ाक़ु

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर जे गुणे वीर जे लॻण ते ताज़ेदार सुभाणे कतर वेंदो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी सां शेख हमद बिन खलीफ़ा जी वफ़ात ते ताज़ेद कंदो। नायब वज़ीर-ए-आज़म ऐं ॿ अहम शख़्सियतूं बि वज़ीर-ए-आज़म सां गॾु हूंदियूं।